उनकी तकलीफ दूर हुई, उनकी परेशानी दूर हुई, तो सिर्फ एक बात जो है वो किस वजह से, मोहब्बत की वजह से। अब ये तो उनकी एक जाहिरी मिसाल होगी, और साथ उन्होंने एक आका दिया कि यह बख्त खुफ्ता को, ये बख्त कहते हैं तकदीर को, नसीब को कहते हैं, और खुफ्ता जो है वह कहते हैं सोया हुआ। कभी कभार आप बोलते हैं जी बस जी मुकद्दर सही गए जी, नसीब सुते हुए जी, हालांकि नसीब दे ही सुते हुए सो। हमारे यहां असल में बस ये डगर पर चल पड़ा है बंदा कि हम दूसरे पर जो है वो अल्जाम लगाते हैं, दूसरे पर ब्लेम देते हैं, और अपने आप भाई सुबह था 4 बजे नमाज पढ़ने के लिए न उठ खड़ा हुआ, न उठ सका, तो ब्लेम दूसरे को नहीं, नहीं भी उठा ले जी, रोजा था टाइम पर ना उठ सका, नहीं जी ने तुम दसिया ही नहीं रोजे वास्ते। कहने का मतलब ये है, आज ये कौम इतनी सेल पसंद हो चुकी है, ये आसाइशें ढूंढ रही है,

0: Osman.
1: My name is Sahin Mudassir.
2: This is Rohan.
3: My name is Rizwan Ishraq.
4: My name is Asham.
5: My name is Azan Mudassir.
6: This is Ariba and you are listening to Link FM.
7: You are listening to Link FM 96.7.
8: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
9: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
10: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
11: And the winner is...
12: Your business being heard on the radio.
13: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
14: Sheffield's very own community radio station,
15: Link FM.
16: My name is Shireen.
17: My name is Abdul Rahman.
1: My name is Sahin Mudassir.
4: This is Rohan.
3: My name is Rizwan Ishraq.
4: My name is Asham.
5: My name is Azan Mudassir.
6: This is Ariba and you are listening to Link FM.
14: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
15: Link FM.

जैसे ये रात फिर नहीं होगी। एक नजर मुड़ के देखने वाले, क्या ये खैरात फिर नहीं होगी।

ब्रेक तमाम सुनने वालों को एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं फैसल याकूब सुल्तानी और ये है क्वाली स्पेशल। और इस क्वाली स्पेशल में हमेशा हम आपको मुख्तलिफ कलाम सुनाते हैं और अब ब्रेक के बाद चलते हैं अगले कलाम की तरफ।

को जन्नत में जगह मिल जाएगी। अल्लाह की रहमत है जाहिद, बतला दे कहां काम आएगी।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेकअवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

लीजिए जनाब, ब्रेक हुई खत्म और आप तमाम को एक बार फिर कहते हैं खुश आमदेद प्रोग्राम कवाली स्पेशल में। मैं हूं फैसल याकूब सुल्तानी। अगर आपने अभी ज्वाइन किया तो आपको पता है कि आपका और हमारा साथ रहता है, हर रोज़ होता है, और ये साथ हमारा इसलिए होता है क्योंकि हम आपको मुख्तलिफ कलाम कवाली सुनाते हैं। तो अब चलते हैं जनाब अगले कलाम की तरफ।

0: to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5,000 से ज्यादा अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई हैं और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज़ के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राब्ता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk/childhoodvaccinations।
2: If you would like to promote your business on our radio station, contact on 0114 261 8182 or email us on info@linkfm.org.

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीम अजरवी और तुसा सुन रहे हो लिंक एफएम।
1: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, busy solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Billhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. The Zia Solicitors is trading style of affinity, 7 law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
2: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0333-00571-009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन, फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
3: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
4: परेशान खड़ते हुए जी
5: अंकल, मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है, कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं?
4: ये तो कोई फिक्र वाली गल नहीं, ऐ साडे पापा गुलाम कादर होरे ना, ए एमओटी वाले ओ हर किस्म ने गड्डियां नी एमओटी करने, भावे कार वे या वैन, ते रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने, खुश अखलाक शख्सियत ते लाजवाब सर्विस।
5: ए ए एमओटी वाले है किधर?
6: ए ए एमओटी क्ले स्ट्रीट अटरक्लिफ S92PE। अपॉइंटमेंट नहीं, कोई जरूरत नहीं, अच्छो एमओटी गड्डी नी करो ते मौजा करो। फोन नंबर 0786-786-2585.
7: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor based at Attercliffe Pharmacy Direct, Sheffield. For just £40, don't delay. Call 07456-848-368. That's 07456-848-368. Or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress free.
8: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
9: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
10: 96.7 Link FM.
0: You are listening to Link FM.
11: Assalamu alaikum, main hu Farooq Rashid.
12: मैं और रणदीप चौधरी।
13: मैं असलम भुट्टा।
14: मैं जी हुसैन कपूर शेफील्ड से।
15: मेरा नाम शफाक हुसैन क्यानी है।
16: मेरा नाम अहमद असगर है।
17: मैं अरशद खान शेफील्ड से हूँ।
18: मेरा नाम अंजुम अफ्ताब है।
19: मेरा नाम इमराना है। कीप लिसनिंग टू लिंक एफएम 96.7।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
15: Our voice, our choice, our radio station. Sheffield's Link FM.
16: Link FM.

0: Name Hazarvi UK Tour 2020 Folk Music. Name Hazarvi will be live on stage on Tuesday, 14th of July 2026 at Arid Suites, Sheffield S47WZ, alongside Farah Khan and Zara Akbar. For further details, please contact Joy Kramath on 07754132576, and you can also book online at Eventbrite. Tickets start from £25. See you all at the Name Hazarvi show.
1: जहाँ दिल मिलते हैं, जहाँ बातें बनते हैं, हर राह की मंजिल.
2: जहाँ बातें बनते हैं, वही है लिंक एफएम. दिल से आपके साथ
3: लिंक एफएम शेफील्ड.

0: जहां हर लफ्ज दिल से निकले
1: और हर सूर
0: दिल को छो जाए,
2: वही है लिंक एफएम।
0: दिल से आपके साथ
2: लिंक एफएम शेफील्ड।
3: Would you like to gain experience whilst building up your CV? Link FM is looking for admin workers, graphic designers, researchers, producers, editors and presenters. Do you think you have an idea? Contact the office on 0114 261

0: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन दिल से आपके साथ।
1: लिंक एफएम शेफील्ड।

धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम।

0: Name Hazarvi UK Tour 2020 Folk Music. Name Hazarvi will be live on stage on Tuesday, 14th of July 2026 at Arid Suites, Sheffield S47WZ, alongside Farah Khan and Zara Akbar. For further details, please contact Joy Kramath on 077-54-132-576, and you can also book online at Eventbrite. Tickets start from £25. See you all at the Name Hazarvi show.
1: जहाँ दिल मिलते हैं, जहाँ बातें बनते हैं, हर राह की मंजिल.
2: जहाँ बातें बनते हैं, वही है लिंक FM. दिल से आपके साथ.
3: लिंक FM Sheffield.
4: राहे मोहब्बत में कुछ कड़ियाँ ऐसी होती है जो जुड़ने पर ही समझ में आती हैं. मुझे तुम्हारा आज भी इंतजार है, और मुझे यकीन है कि तुम जरूर आओगे.

0: सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते हैं। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया।
1: This is Ling Ling FM.
2: If you would like to promote your business on our radio station, contact on 0114 261 8182 or email us on info at

0: You are listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
2: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback. Vizier Solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Billhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Vizier Solicitors is trading style of Affinity 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराए पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
5: परेशान खलते हुए जी
6: अंकल, मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है, कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं?
5: ये तो कोई फिक्र वाली गल नहीं, ऐ साढ़े पापा गुलाम कादर हो रहे ना, ये एमओटी वाले वो हर किस्म की गड़ियां नहीं एमओटी करने, भावे कार वे या वैन, रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने, खुश अखलाक शख्सियत ते लाजवाब सर्विस।
6: एएमओटी वाले हैं किधर?
7: एएमओटी क्ले स्ट्रीट अटकलिफ S92PE। अपॉइंटमेंट नहीं, कोई जरूरत नहीं, अच्छो एमओटी गड्डी नहीं कराओ ते मौजा करो। फोन नंबर 0786 786 2585।
8: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor. Based at Attercliffe Pharmacy Direct Sheffield. For just £40, don't delay. Call 07456 848 368. That's 07456 848 368. Or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress free.
9: $55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
10: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
11: 96.7 Link FM.
0: You are listening to Link FM.
12: Gook Studio, Season 15.

0: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता। आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ,
1: लिंक एफएम शेफील्ड।
2: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM.

0: क्या आपको ये किताब कबूल है?
1: जी कबूल है।
2: जी कबूल है।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो मुबारक।
1: अब कैसे जाया जाएगा मुझसे? मैं छुट्टी लेके जल्दी वापस आऊंगा, मेरा इंतजार करोगी?
2: जी।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
17: This is Link FM. Link FM.
15: Sheffield's Link FM.
18: English school ke bataye. I love you.

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक रशीद।
1: मैं औरंगजेब चौधरी।
2: मैं असलम भुट्टा।
3: मैं जी हुसैन कपूर शेफील्ड से।
4: मेरा नाम इशफाक हुसैन क्यानी है।
5: मेरा नाम अहमद असगर है।
6: मैं अरशद खान शेफील्ड से हूँ।
7: मेरा नाम अंजुम अफताब है।
8: मेरा नाम इमराना है। कीप लिसनिंग टू लिंक एफएम 96.7।

धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक।

खुदा किसी को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अल्लाह को बनाया इसीलिए वो खास बात खुदा ने।

0: Name Hazarvi UK Tour 2020 Folk Music. Name Hazarvi will be live on stage on Tuesday, 14th of July 2026 at Arid Suites, Sheffield, S47WZ, alongside Farah Khan and Zara Akbar. For further details, please contact Joy Kramat on 077-54-132-576, and you can also book online at Eventbrite. Ticket starts from £25. See you all at the Name Hazarvi show.
1: जहाँ हर लफ्ज दिल से निकले और हर सूर दिल को छो जाए,
2: वही है लिंक एफएम।
1: दिल से आपके साथ
2: लिंक एफएम।

0: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता। आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ,
1: Link FM Sheffield।
2: The future is already here. We play your favorite music every day. 96.7
3: Link FM.

0: You are listening to Link FM on 96.7 FM, and this is Drive Time with Jawad Janjua.
1: Assalamu alaikum and a very warm welcome. This is Drive Time Show, live from Pakistan Muslim Center on 96.7 FM's frequency across South Yorkshire. Live on DAB. And online. Just type Link FM live on Google. And you can join us wherever you are, or you can download our app also, Link FM 967. Just go to Play Store, download our app, and take Link FM with you wherever you go. And if you are driving in South Yorkshire, then you don't need our app. You can just tune into 96.7 on FM's frequency. I hope to Allah subhanahu wa ta'ala you all are well and looking forward for another drive time. Are you? Yeah, bas main hi keh rahi hu. Well, if you were waiting or if you are not waiting, I'm here. Jab tak hoon, bardasht kar le mujhe. मेरे जाने पे खुशियां मना लीजिएगा आप, लोगों के आने पे खुशियां मनाई जाती हैं, मुझे यकीन है मेरे जाने पे लोग खुशियां मनाते हैं, कोई गल नहीं यार, आदत होगी हमें भाई। आप तो जिस दिन टेंशन ना हो उस दिन तबीयत खराब हो जाती है यार, आज कोई टेंशन नहीं है जिंदगी में भाई, मजा नहीं आ रहा जिंदगी। Studio number is 0114261-8181 and WhatsApp 0793984939. And if you are driving and you are not able to WhatsApp me, then you can give me a missed call on 0793984939 on WhatsApp, not on mobile, WhatsApp ke number pe. Abe bhai, isse zyada kya positive thing, bacche ki jaan loge kya bhai, isse zyada main kya bolun ke main keh raha hu ke jis din tension nahi hoti us din main sochta hu Allah khair kare kya ho gaya, is pe bhi keh rahe hain think positive, ye positivity hai na bhai, ye positivity, ye thinking positive. हाँ, ये और बात है कि मैं लिंकिंग विद कम्युनिटीज़, यानी लिंकिंग कम्युनिटीज़ नहीं कर रहा, लेकिन थिंकिंग पॉजिटिव कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को छोड़े मैनू पाओ मिट्टी। लिंक एफएम इज लिंकिंग कम्युनिटीज़ एंड थिंकिंग पॉजिटिव, सो यू लिंक विद लिंक एफएम एंड लिंक एफएम विल लिंक विद यू। 7th of July 2026 and the time is 5 minutes past 4. और अब तक सिर्फ एक ही हमें मैसेज आया है, अफशान जी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, और बाकी जो पूरा शहर है उन्होंने पता नहीं किसको ज्वाइन किया हुआ है, मैं समझ नहीं आ रही कि तुसी किसकी ज्वाइन कर रहे हो। मैं आ गया रात को 12 बजे, आप मुझे रात को ना ज्वाइन किया करें कि अगर आपकी रात को नींद पूरी ना हो तो हमें आप टिकटॉक पे ज्वाइन कर लें, ये रात 12 वाले दिन में भी ज्वाइन कर सकते हैं हमें, ये वो वाला ज्वाइन नहीं चाहिए मुझे कि आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है, आप हमें सुन रहे हैं लेकिन उसके बावजूद आप हमें मैसेज नहीं कर रहे। नहीं भाई, हमारी ज्वाइनिंग की डेफिनेशन ही डिफरेंट है भाई, ज्वाइन का मतलब है अपने बारे में बताएं, कुछ खैरियत बताएं। मेरा ब्लड ग्रुप क्या है भाई? यार ये कौन लोग हैं भाई, ये किस किस्म के सवाल करते हैं मुझसे यार। मैंने आज तक कभी किसी को अपना मिडिल नाम नहीं बताया और ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे शुरू। ये तो मैं इन क्वेश्चनों से बड़ा तंग हुआ यार, यकीन करें जिंदगी में कभी मुझे देखा है कि मैं किसी से कोई सवाल करूं? जितना मुझे बताया जाए मैं उसी पर खुश हो जाता हूं। ठीक है भाई, आपकी मर्जी है, लेकिन यहां सवाल जवाब ही नहीं खत्म। लेट्स स्टार्ट द शो, दिस इज ड्राइव टाइम शो।

Kaash Tum Na Jaate. If you just tuned in, this is Link FM 96.7 FM. What a beautiful track. I hope you're enjoying the track. और मैं इस वक्त सोच रहा था जुनैद के बारे में कि आज सिस्टम ने पहले ही सैड ट्रैक लगा दिया. जब वो आएगा तो फिर शायद रोमांटिक ट्रैक लग जाएंगे.

और यार आज क्या हो गया कि सारी जुदाई आ रही है भाई। मान लिया कि जिंदगी उदास है, लेकिन ड्राइव टाइम शो तो हम अच्छा करते हैं यार, उसमें तो उदासी नहीं आती। लेकिन पता नहीं आज जुनेद की कहीं नजर लग गई है यार। वो हमेशा कहता है कि हाइपर नाज थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज, और आपने कंपटीशन में आंसर जवाब दिया, आपका जवाब ठीक लग रहा है, लेकिन ये दिस इज नॉट द आंसर आई एम लुकिंग फॉर। क्योंकि वो तो फिर वही बात हो जाती है ना, जैसे मैंने कहा कि हम सब उसमें फिट आ जाते हैं। आई रन इन एंड आउट ऑफ टाउन ऑल नाइट ऑल डे, व्हाट एम आई। 0114-261-8181 एंड यू कैन विन अ देगी चरगा विद कैन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक बाय सौगात रेस्टोरेंट।

यार फिर आग लग गई यार, आज हो गया मेरे भाई। और प्लीज ये चॉइस मैंने नहीं की, सिस्टम की चूज करके ये ट्रैक चल रहे हैं यार, मन भरिया। ये भी ट्रैक जो है ना सैड ही है भाई, तू कभी भी ना हो, बट आई लाइक दिस वन यार। हाँ जी तुसी कर लियो फरमाइशा।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
1: My name is Shireen.
4: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
17: The name Hazarvi UK Tour 2020 folk music. Name Hazar will be live on stage on Tuesday, 14th of July 2026 at Arid Suites, Sheffield S47WZ, alongside Farah Khan and Zara Akbar. For further details, please contact Joy Kramat on 07754132576, and you can also book online at Eventbrite. Tickets start from £25. See you all at the Name Hazarvi show.
18: From Sheffield to the world, this is Link FM.
19: जी, वेलकम बैक आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक. और अगर आपने अभी अभी रेडियो को ट्यून किया तो भी आपको हम वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं आपको ड्राइव टाइम में. और कंपटीशन स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी तक हमें सिर्फ 3 एंट्रीज आई हैं. जी, सिर्फ 3 एंट्रीज हैं. And the question is, I run in and out of town all day and night. I run in and out of town all day and night. What am I? If you know the answer, 07939849339 is the WhatsApp number. And you can win a Degi Charga with a can of soft drink from Sogat Restaurant. Restaurant. और अगर इस मौसम में देगी चरगा और साथ में ग्रीन चटनी हो और ड्रिंक भी आ जाए और थोड़ा सा चरगे के ऊपर चाट मसाला भी आप डाल लें, डिपेंडिंग ऑन योर हेल्थ कंडीशन, क्योंकि ये मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा। पता चले आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो, हाई ब्लड प्रेशर हो या बाकी चीज़ें हो, आप कहें जी मैंने कहा था इसलिए चाट मसाला, मेरे गले में पहले ही बड़ी चीज़ें हैं, ये वाला इल्ज़ाम भी मैं अपने गले में नहीं लेना चाहता। और बाकी जनाब हमारे तमाम लिसनर की तरफ से ठंड प्रोग्राम है, वो सारे 5 बजे के बाद आएंगे, 4 से लेके 5 बजे तक मुझे करनी चाहिए छुट्टी क्योंकि तुसी वो बड़े बिजी।

जवाब ये हाँ जी हूँ हूँ यहाँ ना कीजिएगा। आई नीड प्रॉपर मैसेज प्लीज। नो हूँ हूँ हाँ जी हाँ जी। महमूद साहब ने ज्वाइन कर लिया, कह रहे हैं सलाम अलैकुम।

होगा जिनको बहुत से मैसेजेस आते हैं और वो हाँ जी करें कि हूँ जी करें, जी ये तुम्हारा बिजनेस है, आपकी मर्जी है। उम्मीद करते हैं ये ट्रैक आपको अच्छा लगा होगा। मैं तो आपको अपनी बात बताऊंगा ना कि मुझे ये हाँ जी हूँ जी पसंद ही नहीं। अब ये बात किस किस को समझ आ गई, पसंद ही नहीं मुझे समझ आ गई। अगर आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा तो समझ गए होंगे कि मैनू पसंद ही नहीं, ना इस पासे की ना उस पासे की। Today's competition question is ke I run in and out of town all day and night. What am I? I run in and out of town all day and night. What am I? And you can win a degi charga with a can of soft drink. Degi charga with chaat masala on. Khao charge aur saath mein piyo drink aur do bhai ko duaen. कुछ ज्यादा मांग लिया क्या यार? जब भी मैं किसी से कोई अच्छी चीज मांगता हूं उनके लिए बहुत ज्यादा हो जाती है। मुझे पसंद नहीं, मुझे नहीं पता कि आप किस पसंद की बात कर रहे हैं भाई। यार ये अपने घर के मसाइल और बाकी के मसाइल अपनी तरफ रखो। Time for a traffic and travel update. Sheffield Parkway A57 is busy if you are travelling towards the city centre. Derrick Dooley Way is busy. Savile Street is busy. Attercliffe Road is busy. Spittle Hill is busy. Chief Street is busy at Park Square Roundabout. Then it's busy but traffic is moving. Slow traffic. Queen's Road is busy. Some part of Queen's Road. Wolseley Road is okay, traffic is moving, it's yellow. Chesterfield Road busy, usual places.

जी उम्मीद करते हैं कि ये ट्रैक भी आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपने अभी अभी रेडियो को ट्यून किया, मैं हूं जवाहर जंजुआ और आप सुन रहे हैं हकायक कहां से आ गया होश ही भूल गए मैं क्या राजा सकलेन साहब तो नहीं सुन रहे ना, क्योंकि कहेंगे यार मेरा प्रोग्राम करने की ख्वाब देख रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपना ही प्रोग्राम है, उसको करने के लिए ख्वाब देखने की जरूरत नहीं है। अल्लाह उन्हें खुश रखे, जब कहूँगा वो मेरे को कहेंगे तू कर ले भाई, कोई मसला नहीं है, टेंशन ही कोई। शेख शहजाद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, आपके मैसेज का बहुत शुक्रिया। तो अगर आप भी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहें, आज के कंपटीशन का क्वेश्चन है कि आई रन इन एंड आउट ऑफ टाउन ऑल डे एंड नाइट। आई नो वी ऑल फील दैट वे, आई रन इन एंड आउट, खासतौर पर अगर आप शादीशुदा हों। मैं समझ सकता हूँ आपके दर्द को, महसूस कर सकता हूँ भाई, कोई गल नहीं। आई रन इन एंड आउट ऑफ टाउन ऑल डे एंड नाइट, वॉट एम आई। और ये वाला जब मैं दर्द कह रहा था तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं अपने जो भाई हैं यानी कि शोहर हजरात हैं उनकी बात कर रहा हूँ। कई ख्वातीन भी ऐसी होती हैं भाई, बंदा नलायक मिल जाए ना अगर किसी भी तरफ का, तो फिर यही होता है कि आई रन इन एंड आउट ऑफ टाउन ऑल डे एंड नाइट, व्हाट एम आई। नहीं नहीं, बंदा ठीक भी मिल जाए तब भी ऐसा ही होता है भाई, लाइफ इज टू बिजी ना। इफ यू नो द आंसर यू कैन विन अ देगी चरगा विद कैन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। तो देगी चरगा खाने का अगर आपका दिल है विद अ कैन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक बाय सौगात रेस्टोरेंट वर्कशॉप रोड, देन ऑल यू नीड टू डू आंसर दिस क्वेश्चन ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर। आई रन इन एंड आउट ऑफ टाउन ऑल डे एंड नाइट, व्हाट एम आई। 07939849339. The competition will end at 5:30. So keep sending your messages.

जी कीप सेंडिंग योर व्हाट्सएप मैसेजेस ऑन 0793984939। हमें कुछ मैसेजेस आए कि जी क्वेश्चन क्या है, लग रहा है अभी ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग। टुडेज कंपटीशन क्वेश्चन इज, आई रन इन एंड आउट ऑफ टाउन ऑल डे एंड नाइट, व्हाट एम आई? आई रन इन एंड आउट ऑफ टाउन ऑल डे एंड नाइट, व्हाट एम आई? गूगल या चैट जीपीटी से पूछने की जरूरत नहीं है भाई। तेरी बाहों जैसा सुकून कहीं नहीं, तू टेंशन ना ले भाई, ये सब ड्रामा हो रहा होता है। लाइन्स आर ओपन 01142618181। दिस इज ड्राइव टाइम शो।

0: اور جی جیسے آپ کو پتا ہے کہ اس سنڈے کو ہم نے پاکستان مسلم سینٹر میں لنک ایف ایم کی 10ویں سالگرہ منائی تھی. لنک ایف ایم 10 سال اور کچھ مہینے اولڈ ہو گیا ہے. تو جتنے بھی اس پہ ویڈیوز تھے یا پکچرز وغیرہ تھیں وہ ہم سلولی سلولی شیئر کر رہے ہیں. سو میک شیور یو فالو اس آن ٹک ٹاک اینڈ ادر سوشل میڈیا پلیٹفارمز. اور ٹک ٹاک آئی ڈی از لنک ایف ایم 967. جائیں وہاں پر ہمارے جو بھی پروگرام میں تصویریں کھینچی گئیں وہ دیکھیں, ویڈیوز دیکھیں, لائک کریں, کامنٹ کریں اینڈ شیئر کریں. میں یہ نہیں کر رہا کہ میری تصویر کو لائک کریں, میری کو تو دیکھ کے کئیوں کو ٹینشن ہو جاتی ہوگی. آپ میری کو نہ لائک کریں, باقی بہت سے اچھے اچھے بڑے بڑے سیلیبریٹیز کی وہاں پر ویڈیوز ہیں اور پکچرز ہیں, انہیں دیکھیں, لائک کریں اور لنک ایف ایم کے ساتھ جڑے رہیں, کیونکہ لنک ایف ایم لنکنگ کمیونٹیز تھنکنگ پازیٹیو. We have a new listener also. Hamad is one of our new listeners. I'm not sure, Hamad, if you are listening. If you are listening, very warm welcome. In 50 seconds, I'm going for a commercial break. This is the second commercial break of today's Drive Time show, and today's competition question is, I run in and out of town all day and night, what am I? I run in and out of town all day and night, what am I? Isko sawal agar ye hota na ki I run in and out of house, in and out of my house all day and night, what am I? To phir aap koi bhi naam fit kar dete, lekin ye maine sawal nahi kiya, maine sawal kiya I run in and out of town all day and night, what am I? And you can win a degi charga with a soft drink ka can. Walaikum salam. Attendance late. غیر حاضریوں پہ غیر حاضری, unacceptable detention. بات کریں گے after the break. Don't go anywhere.
1: Listen to Link FM on the move by downloading the Link FM app.
2: To make a difference in your community, join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
7: Are you looking for the perfect venue for your special day? Then come to VIP Mansion, with seating for up to 550 guests and situated in Sheffield, just 3 minutes from the M1. From dry hire to all-inclusive packages, we offer it all. For any inquiries, call us on 07 809 568 233, or follow us on Instagram at VIP Mansion Weddings.
8: لو جی سنو جی, آئی گئے خان کیٹرنگ والے. خان کیٹرنگ رادرم, جنہوں نے مزیدار کھانے نہ کوئی جواب ہی نہیں, ایک واری ازمائی کے تکو. شادی بیاہ, سالگیرہ, مانیاں, مہندی اور دیگر تقریبات واسطے ایک مہنگائی نے دور وچ सस्ता तो मजेदार खाना आर्डर पर बनवाई सकने हो। एक और भी गल पूछो, खान कैटरिंग राधरम वाले पूरे साउथ यॉर्कशायर विच कैटरिंग नी डिलीवरी भी करने। आर्डर निका होया या बड़ा, ऑलवेज वेलकम। खाने ने आर्डर वास्ते भाई इफ्तिखार की फोन करो या व्हाट्सएप पर रابطہ करो 0793173547
5: या 0778485093।
9: Do you ever find yourself lonely or isolated, or there are issues at home like finance or housing related? Perhaps you have something on your mind and would like to get it off your chest. Whatever it is, your Epic Link worker, Tamina Mia, would like to offer you this space to talk at the PMC every Wednesday from 11am till 2pm. This is a social space for you and other ladies to unwind and engage in various activities. Refreshments are available. Let your Epic Link worker encourage you to build meaningful connections with your community. So what are you ladies waiting for? Let's connect. It'll be epic. For more information, contact Dr. Rob on 074-439-54378. That's 074-439-54378.
1: This is Link FM. Keep listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM.
0: Welcome to Link FM. If you just tune in or this is the first time you tune in. Why first time? Where have you been, guys? 10 saal se hum yahan par maujood hain. Not me, obviously. हमें क्या मिला भाई, हमें क्या मिला यार? ये पता नहीं कौन लोग हैं यार, ये बंद करो यार, इनका बंद करो यार, ब्लॉक करो इनको पक्का। हमें कुछ मैसेज आ रहे हैं कि जी वी शुड गिव अवार्ड फॉर, नो सॉरी, क्या कह रहे हैं यार, होश ही भूल गए, लाइन भी मेरी ऊपर नीचे होगी। ओके, कह रहे हैं जी वी शुड गिव अवार्ड टू गुड लिसनर्स आल्सो। व्हाट डू यू मीन गुड लिसनर्स? Listeners are listener. What's that mean? Ke good listeners. Presenter ko award mil jata hai, listeners ko award milna chahiye. Bhai, ye yaar, bas kya baat hai yaar inki? Kya baat hai bhai? Abdul Majid bhai, khairiyat hai na? Kidhar gayab hai aap? Ye aapko pata na ki ye drive time mein ye cheez bardasht nahi ki jati. Zainab, meri behan. जहां से बच्चों को उठाया है ना अभी आपने, यानी उठाया, ये अजीब से वो हो गया कि जहां से बच्चों को उठाया, यानी जहां से बच्चों को पिकअप किया आपने, अगर बच्चा वहां पे लेट जाए या ऑफ हो जाए बगैर किसी वैलिड रीजन के, तो व्हाट डू दे डू? डिटेंशन। और ये क्या बात हुई कि आपका जब दिल हो आप हमें लिंक एफएम पर ज्वाइन कर लें, जब दिल हो छुट्टी कर लें, ये नहीं होगा भाई, ये नहीं होगा मेरे होते हुए, ये नहीं होगा। या हमारे साथ होंगे या हमारे साथ नहीं होंगे। अपनी तो थ्योरी यही है, इस थ्योरी की वजह से बड़े नुकसान उठाए, वरना कई लोग तो ऐसे भी थे, कह रहे थे आपके भी साथ हैं, किसी और के भी साथ हैं, उनके भी साथ हैं, मोहल्ले के भी साथ हैं, खानदान के भी साथ हैं, रिश्तेदारों के भी साथ हैं, दोस्तों के भी साथ हैं। मैं कह जी नहीं नहीं ऐसे नहीं होता भाई, आप जिसके साथ हैं, अब अल्लाह खुश रखे आप सब। अकील भाई, पूरी कोशिश करता हूं कि आपकी फरमाइश का ट्रैक भी लगे। और आज के कंपटीशन का क्वेश्चन दोबारा कह देता हूं, फिर कहेंगे कि बोलता बहुत है भाई। आई रन इन एंड आउट ऑफ टाउन ऑल डे एंड नाइट, व्हाट एम आई? नो, द आंसर इज नॉट ज़ैनब। Answer is not Jawad. I run in and out of town all day and night. What am I? Yaar, iska jawab to sabko aana chahiye. I run in and out of town all day and night. What am I? If you know the answer, 0114-0114-261-8181 and 0793984-9339, and you can win a degi charga with can of soft drink. रोस्टेड चिकन, फिर बोलेंगे देगी चरगा क्या होता है, देग के अंदर चरगा, यानी रोस्टेड चिकन with a can of soft drink. Abdul Majid bhai ne bhi hame join kiya, salam kiya hai aur saath mein jawab bhi diya hai bhai. Zainab ne bhi join kiya aur saath mein jawab bhi diya hai. ये दूसरा वाला जवाब जो है ये इन एंड आउट ऑफ टाउन कब होती है भाई? ओए ओए ओए ओए यार, इस पूरी दुनिया में सबसे वेला आदमी मैं हूं यार, सिर्फ मैं. बहन हमारी कह रही है कि नहीं, आई लिसन मोस्टली एवरी डे. मैसेज करने का टाइम नहीं है. ये नहीं कहा कि मैसेज करने का टाइम नहीं है, कह रही है मैसेज करने का टाइम नहीं है. अगर ये कह देती ना कि मैसेज करने की फुर्सत नहीं है, ये टाइम नहीं है, ये नहीं कहा. कह रही है मैसेज करने का टाइम नहीं है भाई, फजूल बातें सुनने का टाइम नहीं है, फजूल मैसेज का जवाब देने का टाइम नहीं है. ये है ये और मुझे कहती है मेरा कि मैं भाई हूँ, बड़ा भाई.

और भाई हम भी यही कहते हैं कि लिंग एफएम को आप जब सुन रहे होते हैं, ड्राइव टाइम को सुन रहे होते हैं, तो जरा हूँ हाँ हाँ का मैसेज कर दिया करें ताकि हमें भी पता चले। और आप कह रहे हैं कि माय वे और हाई वे इज द उसूल ऑफ लाइफ, मेरा तो इससे भी अलग उसूल है कि माय वे और नो वे। हाई वे तो फिर भी हाई वे है ना, आप 70 के ऊपर चला लेंगे। अपना तो उसूल भी डिफरेंट है, माय वे और नो वे, जो दिल है करो फिर।

जी आज की जो कंपटीशन है उसका क्वेश्चन है, आई रन इन एंड आउट ऑफ टाउन ऑल डे एंड नाइट, व्हाट एम आई? 07939849339. सो फार वी हैव 11 एंट्रीज and keep sending your messages on 07939849339 and you can ring me also when I'm playing any tracks. Then yes, you can ring me on 01114 2618181.

और शाह साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज ऑल्सो, और आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं और पसंद कर रहे हैं. थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड कीप सेंडिंग योर मैसेजेस. आपने कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं लिया है लेकिन चलें कोई बात नहीं. और आखिरी फ्यू मिनट्स हैं क्योंकि कॉम्पिटिशन विल फिनिश एट 5:30 यार, 5:30. आज दिमाग कहीं और है भाई. एंड टुडेज कॉम्पिटिशन क्वेश्चन इज के आई रन इन एंड आउट ऑफ टाउन ऑल डे एंड नाइट, व्हाट एम आई? I run in

जी तड़पना तो बनता है कि अगर दीदार ना हो रहा हो तो तड़पना बनता है भाई, बनता है यार। उम्मीद करते हैं कि अब तक का सफर आपका हमारे साथ अच्छा गुजर रहा होगा। और अगर अब भी आप कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहें, आई रन इन एंड आउट ऑफ टाउन ऑल डे एंड नाइट, व्हाट एम आई, आई रन इन एंड आउट ऑफ टाउन ऑल डे एंड नाइट, व्हाट एम आई। इफ यू नो द आंसर, 0114-261-8181 एंड व्हाट्सएप 0793984939।

हमारा और आपका साथ रहेगा शाम के 6 बजे तक, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सिलसिला अच्छा लगता होगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में भी कुछ बहुत अच्छा, बहुत नाइस ट्रैक्स आपके लिए लगाएंगे, उम्मीद करेंगे आप पसंद करेंगे। साथ देते रहिएगा, हम हैं आपके साथ और आप हमारे साथ।

और ये जब भरम टूटता है ना तो बड़ा मजा आता, मतलब मजा नहीं आता यार, फिर बहुत तकलीफ होती है। भरम नहीं टूटना चाहिए किसी का भी, और कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी

Today's competition question is, I run in and out of town all day and night. What am I? Junaid, yaar, bahut late yaar. ये मजाक अब अच्छा भी नहीं लग रहा, क्योंकि ये सबसे पहले मैंने ये बात बोल दी थी और मेरे को आदत नहीं है कि मैं लोगों की बात रिपीट करूं, और मुझे ये भी आदत नहीं है कि लोग मेरी बात रिपीट करें। कमी तेरी यादों से पीछा ना छूट सका, यादों से पीछा छूट ना सका। व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक, आई होप यू आर एंजॉयिंग द ट्रैक।

0: And I want one number from 1 to 15. 15 entries aayi hain hamare paas aaj competition ki. I will really appreciate if you can send me one number between 1 to 15. 15 aur 1 ke darmiyan ka koi bhi number mujhe bhej dein aap. साथ देते रहिएगा शाम के 6 बजे तक
1: ये सजा तू कभी ना मेरा हो पाया मगर मैं कभी
0: अब प्रोग्राम के इस ट्रैक के बाद कंपटीशन के जो विनर है उसका भी अनाउंस करेंगे थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग ऑल योर मैसेजेस आई रियली अप्रिशिएट And today's competition winner is Anika. Anika, you are the winner. Atif, you have sent me a message, but you haven't messaged me with the answer. But I appreciate. Good to know that you are also listening. Abhe bas kar bhai, bas kar yaar. दो लोग ऐसे हैं जिनके आगे आपका झूठ चल नहीं सकता जुनेद एक मैं हूं और दूसरा आपको बताइए ये ड्रामे है एक होता है ड्रामा एक होता है ना जो सही वर्ड होता है उसको कहते हैं ड्रामा ड्रामा होता है नॉर्मल लेकिन जुनेद मेरा जो भाई है ना और एक और हमारे लिसनर है ये ड्रामा नहीं करते ये ड्रामा करते ये ड्रामे का भी एक हाई लेवल है अप लेवल है एंड टुडेज कॉम्पिटिशन विनर इज अनिका I will really appreciate if you can message me. You are the winner. And the question was, I run in and out of town all day and night. What am I? Aur zyada logon ke answer theek hain. Ek do ke shayad theek na ho. And the answer was road. I was expecting all the jo tumhare taxi driver hazrat bhai hain unhe ye pata hona chahiye ki I run in and out of town all day and night. What am I? लेकिन वो सारे समझ रहे हैं वो अपना अपना नाम ले रहे हैं क्योंकि वो बेचारे और मैं बेचारा भी रन इन एंड आउट ही होते तो अगर आप अपने बारे में सोच रहे हैं तो भी कोई बुराई नहीं है भाई कभी कभार अपने बारे में कभी कभार नहीं अपने बारे में सोचा करें क्योंकि अगर आप इस खुशफहमी में रहें कि लोग आपके बारे में सोच रहे हैं या कोई आपके बारे में सोच रहा है तो इस खुशफहमी में ही रहेंगे आप किसी के पास टाइम नहीं है कि वो आपके बारे में सोचे और अगर वो आपके बारे में सोच रहा है ना तो उसकी एक रीज़न है हो सकता है कि कोई ना कोई आपके बारे में सोच रहा हो ये ना सोचना कि वो आपके बारे में इसलिए सोच रहा है कि वो आपसे बड़ी मोहब्बत करता है ओ भाई कोई आपके बारे में इसलिए सोच रहा है कि उसने आपके साथ बहुत अच्छा किया और आपने उसके साथ बुरा किया कोई आपके बारे में इसलिए सोच रहा है कि उसने आपने उसके साथ बहुत अच्छा किया बे इंतहा वफाएं की बे इंतहा दफ़ा उसके उसकी बात पे बिलीव किया लेकिन उसने आपका बैंड बजा दिया तो वो सोच रहा है अपने गिल्ट में सोच रहा है और कोई इसलिए सोच रहा है कि आप उसके अच्छे बुरे वक्त के साथी थे और जब उसके साथ कोई नहीं खड़ा था तो आप खड़े थे और कोई शायद इसलिए सोच रहा हो कि आप जब उसकी जिंदगी से या वो आपकी जिंदगी से निकला तो उस शख्स ने या आपने कुछ ऐसी जुबान इस्तेमाल की जो शायद आपको ये जान के अफसोस हो रहा है कि यार मुझे ये नहीं कहना चाहिए था और यार ये भी हो सकता है कि वो आपके बारे में इसलिए सोच रहा है चलो मिट्टी पाओ सोचने तो यार उसकी मर्जी है मुझे क्या पता क्यों सोच रहा है भाई हर एक की अपनी सोच है यार आपको पता होगा कि क्यों किसके बारे में क्या सोच रहे हो एनीवे जी इस कंपटीशन का जो आज का क्वेश्चन था आई रन इन एंड आउट ऑफ टाउन ऑल डे एंड नाइट व्हाट एम आई एंड द आंसर वाज रोड एंड अनिका यू आर द विनर ऑफ टुडेज कंपटीशन आई रियली अप्रिशिएट ऑल द एंट्रीज ऑल द लिसनर्स जिन लोगों ने हमारा साथ दिया और मैसेज किया और जिन्होंने मैसेज नहीं किया उनका भी शुक्रिया उनका ज़्यादा शुक्रिया क्योंकि वो इतने बिजी लोग हैं कि प्रोग्राम सुनते सुनते अब यह है ना फुर्सत नहीं मिली एक मैसेज है फुर्सत नहीं मिली प्रोग्राम सुनती हूँ लेकिन मैसेज करने की फुर्सत नहीं है भाई टाइम नहीं है क्योंकि टाइम पता क्यों नहीं है टाइम इसलिए नहीं है कि आई रन इन एंड आउट ऑफ होम ऑल डे एंड नाइट, इसलिए मुझे टाइम नहीं है कि मैं आपके प्रोग्राम में जवाब दूं। जुनेद भाई आज मेरा मूड जो है ना, बस क्या करूं बस क्या करूं, अच्छा ना भी हो तब भी मैं अच्छा ही रखता हूं। और जुनेद मेरा जो भाई है ना, उसको बहुत शौक है दुखी गाने सुनने का। आज प्रोग्राम में दुखी दुखी लगे, लेकिन ये वाला ट्रैक दुखी ज्यादा दुखी है। ये दुखी मैं अपने जुनेद दुखी के लिए, जुनेद दुखी ये आपके लिए है, आपको डेडिकेट कर रहा हूँ।

ये उस जमाने में जनाब नेविगेशन सिस्टम नहीं होता था और गलत एड्रेस पे ये पहुंच गए। अब ऐसा नहीं होता, अब गूगल मैप आपकी हेल्प करेगा आपको बताने में, चैट जीपीटी आपकी मदद करेगा कि ये बंदा वफा वाला है या नहीं है, तो आप सही एड्रेस पे पहुंच जाएंगे।

बल्कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये होगा कि चैट जीपीटी और गूगल आपको कहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम टिकटॉक के ऊपर स्वाइप अप करते रहें, वीडियो देखते रहें, लोगों के वीडियो देखते रहें। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कोई आपको दुख नहीं दे सकेगा, कोई आपका दिल तोड़ नहीं सकेगा। आप वीडियो देख देख के अपनी शाम रात को दिन गुजार देंगे, कोई टेंशन नहीं होगी यार।

0: सारे सितारों से भी।
1: उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के दौरान अगर मेरी कोई बात या मेरे किसी अमल से आपका दिल दुखा, मुझे माफ कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मेरे बाद आ रहे हैं राजा गाजी साहब परदेश विच देश दे के। उम्मीद करते हैं आप उनका भी साथ देंगे। फी अमान अल्लाह एन अल्लाह।

0: धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।
1: If you're looking to promote your business on Link FM, call our sales team now on 0114 261 8182 or email info@linkfm.org.

0: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.
1: My name is Shireen.
2: My name is Abdul Rahman.
3: My name is Sai Mudassir.
4: This is Rahan.
5: My name is Rizwan Ishraq.
6: My name is Asham.
7: My name is Azan Mudassir.
8: This is Ariba and you are listening to Link FM.
9: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
10: Link FM.
11: जहाँ दिल मिलते हैं जहाँ बातें बनते हैं हर राह की मंजिल
9: जहाँ बातें बनते हैं वही है लिंक एफएम दिल से आपके साथ
12: लिंक एफएम शेफील्ड

उम्मीद है कि मलक मीन साहब और उन्हें दोस्तों की पसंद आया जरूर जबरदस्त ही पुरानी यादा ताज़ा हुई जनाब तो हूँ इस नेक्स्ट तुम्हें पसंद जरूर।

0: Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Saeed Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
1: My name is Shireen.
4: My name is Abed Rahman.
2: My name is Saeed Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
17: The name Hazarvi UK Tour 2020 folk music. Name Hazarvi will be live on stage on Tuesday, 14th of July 2026 at Arid Suites, Sheffield S47WZ, alongside Farah Khan and Zara Akbar. For further details, please contact Joy Kramat on 07754132576, and you can also book online at Eventbrite. Ticket starts from £25. See you all at the Name Hazarvi show.
18: जहाँ हर लफ्ज दिल से निकले
19: और हर सूर दिल को छो जाए,
20: वही है लिंक एफएम.
18: दिल से आपके साथ.

उम्मीद है कि दोस्तों की पसंद आया सी। जितने दोस्त का साथ देने समा दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। ये तुसें ना पढ़ लेंगे हमें जरूर सब दोस्तों वास्तव सुनो पसंद है सी।

उम्मीद है कि दोस्तों ने पसंद आया हूँ जनाब तुम जायज़ करसा प्रोग्राम टाइम खत्म है ये आखिरी सब दोस्तों वास्ते है जितने दोस्तों साथ दिया सब दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया ये तुम्हें अपन लिंक है मैं जरूर ये जनाब अगर कोई गलती माफ़ करे अगले हफ्ते फिर मुलाकात हो सी सुनो।

0: keep listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5,000 से ज़ायद अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई हैं और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज़ के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राबता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk/childhoodvaccinations।

0: आपके साथ Link FM
1: Sheffield. मैं हूं अली अब्बास और आप सुन रहे हैं Link FM 96.7 FM.
2: You can listen to Link FM on 96.7 FM across South Yorkshire, online and on DAB.

0: listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5000 से ज़ायद अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई हैं और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राबता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें NHS.UK/childhoodvaccinations।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
17: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.
18: हर धड़कन की आवाज है Link FM. मोहब्बत भरा अंदाज है Link FM. सुबह की रोशनी, शाम की महफिल, हर दिल का राज है Link FM. दिल से आपके साथ.
19: Link FM.

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

0: You're listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
2: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, Azir solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Bellhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Azir solicitors is trading style of affinity, 7 law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
5: ते तुसो कियो परेशान खलते वे हो जी
6: अंकल मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं
5: ये तो कोई फिक्र वाली गल है नहीं ए साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना ए एमओटी वाले वो हर किस्म ने गड़ियां नहीं एमओटी करने ओए कार वे या वैन रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने खुश اخلاق शख्सियत तला जवाब सर्विस
6: ए ए एमओटी वाले हैं किधर
7: ए ए एमओटी क्ले स्ट्रीट अटकलिफ S92PE अपॉइंटमेंट नहीं कोई जरूरत नहीं अच्छो एमओटी गड्डी निकरो ते मौजा करो फोन नंबर 07867862585.
8: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor based at Attercliffe Pharmacy Direct Sheffield. For just £40, don't delay. Call 07456 848 368. That's 07456 848 368. Or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress-free.

0: difference in your community. Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: सुनिए सुनिए सुनिए, पर्ल बेकर्स ने शेफील्ड में धूम मचा दी, यानी रंगारंग मिठाइयों की दुकान सजा दी। गुलाब जामुन, लड्डू, रसमलाई, फलूदा, हलवा, पूरी,
2: समोसा, चाट, नमक पारी, जलेबी, गाजर हलवा, हर किस्म की केक और मिठाई जो सबको पसंद आई।
1: लजीज चिकन पेस्ट्री, लैम्ब पेस्ट्री, सैंडविच, चिकन पनीनी, दही बल्ले और किबाब, सब कुछ ही लाजवाब। पर्ल बेकर्स, 640 Stanyford Road, शेफील्ड, S94LP, टेलीफोन 0114296092। पर्ल बेकर्स।
3: Getting married or know someone who is? Make your big day unforgettable with Diamond Wedding Services. From breathtaking floral decor to elegant stages, centerpieces and stunning walkways, we design every detail to perfection. However you imagine your dream wedding, our team can bring it to life. So relax, celebrate and let Diamond Wedding Services handle the magic. Call 077-680-47693 and follow us on Instagram and TikTok at Diamond Wedding Services. Your dream, beautifully designed.
4: You are listening to Link FM.
5: Sheffield's very own community radio station.
6: Link FM.
7: Assalamu alaikum, main hoon Farooq Rashid.
8: मैं औरंगजेब चौधरी।
9: मैं असलम भुट्टा।
10: मैं जी हुसैन कपूर शेफील्ड से।
11: मेरा नाम शफाक हुसैन क्यानी है।
12: मेरा नाम अहमदस करा है।
13: मैं अरशद खान शेफील्ड से हूँ।
14: मेरा नाम अंजुम अफ्ताब है।
15: मेरा नाम इमराना है। कीप लिसनिंग टू लिंक एफएम 96.7।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.